तुम मात पिता हम बारक दे कोए न जान तुमरा अंत उचेते सगल समगरी तुमर सूतर तारी तुमते हो सो आज्ञा तुम्हारी गात मित तुम ही जानी नानक दास सदा तुम्हारी गात मित तुम ही जानी नानक दास सदा अरदास एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवें प्रथम भगवती सिमरका गुरु नानक लई ते आए फिर अंगत गुर ते अमरदास रामदासा होई सहाए अर्जन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आईया जिस जिठा सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया करण उन दे आवै ताए सब थाई होए सहाए दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब सब थाई होए सहाए दसा पातशाहियां दी आत्मक जोत श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे पित्र पाठ दीदार दा ध्यान धर के बोलो जी पंजा प्यारियां चौहां साहबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड के छकिया देख तलाई तेग वाही देख के अनडिठ कीता तिना प्यारियां सत्यारियां दी कमाई का ध्यान धर के बोलो जी जिन्ना सिंगा सिंगणियां ने धर्म हेत सीह दिते बंद बंद कटवाए खोपरियां लुहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े आरिया नाल चराए गए गुरद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी केसां स्वासां संग नभाई तेरे भाणे नूं मिठा करके मन्निया तिना प्राचीन ते वर्तमान समय दे समूह शहीदां दी पित्र कमाई दा ध्यान धर के बोलो जी पंजां तख्तां सरबत गुरद्वारियां गुरधामां दी कमाई का ध्यान धर के बोलो जी प्रथमा सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु चित आवै चित आवण का सदका सर्व सुख होए जहां जहां गुरु खालसा जी साहेब तहां तहां रशिया रियायत देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहेब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले बोलो जी।

अगम अगाध ऊच आपार जो तुध सेवहे तिन पाओ दुख नाहे गुर प्रसाद नानक गुण गाहे जो दिसा सो तेरा रूप गुण निदान गोविंद अनूप सिमर सिमर सिमर जन सोए नानक कर्म प्रावत होए तिस जिन जपया तिस को बलहार तिस का संग तरा संसार कहो नानक प्रभ लोचा पूर संत जना की बांशो तूर जिन जपया तिस को बलहार तिस का सा